नान्तोस्तिमम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषतुद्देशत प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम्।